मत हरण सपा बणिया इस गुफा मह एक थान सुहाया पूरा गुर हौ मैं भरम चुकाया आन दिन नाम सलाहन रंग राते।

गुरमुख बूझ हर गावणिया अकथो कथिये शब्द सुहावे गुरमति मन सचो पावे सचो सच रवहै दिन राती इह मन सच रंगावणिया।

कौन कर्म कौन निष्कर्मा, कौन सो कह कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया, किन विद

है रखवाला, मात गर्भ में तुम ही पाला, माया अगन न पूहै तिनको रंग रत्ते गुण गावणिया, क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली, तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बिन अवर न जानणिया।

लिखिया तुर संजोग वडभागी मेरा प्रभ मिले ता उतरह सब वियोग नानक को प्रभ राख।

मंगिर माहे सोहंदियां हर तिर संग बैठड़ियां तिनके सो भाक्या गणी जे साहिब मिलड़ियां तन मन मौलिया राम स्यों संग साध सहेलड़ियां।

पैयाहु भूख सुहंदा सर्व सुख जिस बख्शे वे परवाहु माघ मज्जन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान हर का नाम त्याय सुन सबनानो कर दान जन्म

मैं मर जाती। गुरमुख रंग चलू लिया रंग हर रंग राती, सो सेव हो सत निरंजनों हर पुरख बिधाती। तू आप सुजान है वट पुरख।

आहे वन खंड वासा एक भगवान वेस कर फिर है जोगी सन्यासा अंदर तृष्णा बहुत साधन भोजन की आसा बिरथा जन्म गवाए ना गिरही ना उदासा जम

जिसनो नदर करे तिस देव है, नानक गुरमुख रतन सो लेवै पौड़ी। भगतां तै संसारियां जोड़ कदे ना आया, करता आप अभुल है ना।

भगत करह मूर्ख आप जनाव है, नच नच टप है बहुत दुख पाव है। नचया टपया भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए। भगत

गुरमुख नाम निधान लय दरगाह लय छाए रहाउ लख चौरासी परम दे मन हठ आवै जाए गुर का शब्द न चीन्यो फिर जोनी।

मुरारा शिव शक्त मिटाइया चूका अंधियारा तुर मस्तक जिन कौ लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाई संत जन हो जिस देख हों जीवा हर बिन चसा ना जी।

निर्गुण कथा कथा है हर की, भज मिल साधु संगत जन की, तर भौजल अकथ कथा सुन हर की, गोविंद सत्संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ, जो जन त्यावह हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा

बिन सजाए कूरा कछ पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा, गौड़ी ग्वारे री महला चौथा। सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम ते आया हर तनी, जिन हर जपया।

जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई। जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे। जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे। जन नानक हर रस तृप्त।

ज्यों जननी सुत जन पालती राखै नदर मझार अंतर बाहर मुख दे गिरास खिन खिन पोचार त्यों सतगुरु गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं याने धन धन गुरु गुर सतगुर पांधा।

ऐसा हर नाम मन चित नित ध्यावहो, जन नानक जो अंति अवसर लै छाया। गौड़ी बैरागण महला चौथा, जिस मिले मन हुए आनंद, सो सतगुर कहिए।

नाम हर हर जग हर हर जग अवखद हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साथे तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक

त्यों मन मुख गर्भ गलांढे हम जानिया कछु ना जान है आगे ज्यों हर राख त्यों ठाडे हम भूल चूक।

हर हर अर्थ शरीर हम बेचया पूरे गुर कै आगे सतगुर दाता नाम दिढ़ाया मुख मस्तक भाग सभागे राम गुरमत हर लिब लागे रहाओ कट कट रमैया रमत राम राय गुर शब्द गुरु लिब

गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बिनासियो, घर वस्त लही मन जागे, साकत बद्धक माया धारी, तिन जम जोहन लागे।

गुर पुरख अजन्मा वडभागी मिल रामा। गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो। वडभागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, वडभागी

इस ग्रह में कोई जागत रहे सावत वस ओह अपनी लहै रहाओ। सगल सहेली अपने रसमाती ग्रह अपने की खबर न जाती मुसन हा

कहावों रिद सिद्ध बुलावों ताज कुलह सिर छतर बनावों बिन जगदीश कहां सच पावों खान मलूक कहावों राजा अबे तबे कूड़े है पाजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द न सबर।

सी अलख अपेवा सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना ना मोह भूले जम का दुख सहना मैं तार नाम ज्यों राखो रहना।

चालहि गुरमुख हुक्म रजाई, रहहि अतीत सच्चे शरणाई। सच कर बैसै काल न जो है, मन मुख कौ आवत जावत दुख मोह रहाउ। अपयो पियो अकथ कथ रहियै, निज घर बैस सहज कर लहियै। हर रस माते इहो सुख कहियै।

हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर ना पारिया। साच महल गुर अलख लखाया, निहचल महल नहीं छाया माया। साच संतोखे भरम चुकाया, जिन कै मन वसिया सच सोई। तिन की संगत गुरमुख होई।

जन पूरा तित कट अनहत बाजे तूरा जो जन राम भगत हर प्यार से प्रभ राखे कृपा तार जिनकै हृदय हर हर सोई तिनका दर्श परस सुख होई सर्व जियां मह एको रवै।

आत्म सुख तारा इत उतरा खो दीन दयाला तो शरणागत नदर निहाला रहाओ। जह देखो तह रव रहे रख राखन हारा तू दाता भुगता तू है तू प्राण अधारा। किरत पया अद ऊर दी बिन ज्ञान बिचारा बिन उपमा जगदीश की बिन सैना दियारा। जग बिन सत हम देखया लोभे अहंकारा गुर सेवा प्रभ पाया सच मुक्त द्वारा। निज घर महल अपार को अपरंपर सोई बिन शब्द थिर को नहीं बूझै सुख होई। क्या ले आया ले जाए क्या फासह जम जाला डोल बद्दा कस जेवरी आकाश पाताला।

गुर प्रसादी बूझले तो हुए निबेरा, कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा। बिन गुर शब्द न छूटी है देखो विचारा,

आए। गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई। गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बुद्ध हो बूझो सोई। लोक समझावहो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुख हो।

होई नानक गुरमुख बूझै कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावै नामो सेवै नाम सहज समावै।

दुख सगल मिटाई, सदा आनंद हर नाम लिवलाई। गुर मिले हमको शरीर शुद्ध पई, हो मैं तृष्णा सब अग्न बुझई।

मन कर हला सतगुर पुरख ते आए रहाओ, मन कर हला विचारिया हर राम नाम ते आए, जिथे लेखा मंगिए हर आपे ले छाए, मन कर हला अत निर्मला मल लागी हो मैं आए, पर तख फिर घर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाए, मन कर हला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पहलाए, उपाय कितै ना लभई गुर हृदय हर देखाए, मन

तब इसको है मुश्किल भारी। जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किछ ताता। जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा। जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा। जब इन किश कर माने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा। जब इन एको एकी बूझया तब ते इसनो सब किश सूझया। जब एहो तावे माया अर्थी न तृप्तावे न तिसलाथी। जब इसते एहो होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला। कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदिर मह दीपक जलियो। जीत

होए। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द रिद अंतर तहरै।

परमानंद। सहजे अमृत पियो नाम, सहजे कीनो जी को दान। सहज कथा मह आत्म रसिया, ताके संग अविनाशी वसिया। सहजे आसन अस्थिर पाया, सहजे अनहत शब्द बजाया।

सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निश्चल सच थाना तहा संगत साध गुण रसै अन पौ नगर तहा सद वसै तह पौ परमा सोग ना चिंता आवन जावन मृत ना होता तह सदा आनंद।

साध संग तरै गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिस है वड्याई।

जिन सिमरन है आत्म घाती साकत नीच तिस कुल नहीं जाती जिस भया कृपाल तिस सतसंग मिलाया कहो नानक गुर जगत तराया गौड़ी महला पंजवा।

चरण दुख पंजनो भगत वचल हर नायो अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृत संत ओटायो निर्गुणी आरे की बेनती देहो दर

समानिया मिल सखी सहेलड़ी हो हम फिर रावेहा गुर पुछ लिखोंगी जियो शब्द स्नेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया निकस जाता रह आसिर जाम सच पछाणिया।

आप रहया, आप सब कल धारिया। बिनवंत नानक पैज राखो, सब सेवक शरण तुम्हारिया। मोहन तुद

तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। सलोक आप है किया कराया आप है करने जोग नानक एको रव।

या जुग मह एक है कौ आया, जन्मत मोहयो मोहनी माया, गर्भ कुंट मह उर्ध तप करते, सास सास सिमरत प्रभ रहते, उर्ज परे जो छोड़ छड़ाना, देवनहार मन है बिसराना, तार हो कृपा जिस है गुसाई, एत ओत नानक तिस बिसरहो नाही। श्लोक आवत हुक्म विनाश हुक्म।

जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाय।

हो गोविंद भज हो संत है की सिख ले हो प्रीत करहो सद एक स्यों या साचा असने हो कारण करण करावनो सब विद एक हाथ जित जित लाभ हो।

साध संग पतियाना दुख सुख उआकै समत बिचारा नरक सुरग रहत अवतारा ताहू संग ताहू निर्लेपा पूर्ण घट घट पुरख।

पौड़ी। लल्ला लावा औखद जाहू, दुख दर्द तेह मिटहि खिनाहू। नाम औखद जे हृदय हतावै, नाम औखद जे हृदय

अखर महत्र पवन प्रवत हरे अखर कर कर वेद विचारे अखर शास्त्र सिमरत पुराना अखर नाद कथन बखियाना अखर मुकत जुगत पह परमा अखर मुकत जुगत पह परमा अखर कर्म किरत सोच धर्मा।

ज्ञान भंजन गुरुदेव बंधप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत निरुधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मुहूर्त गुरुदेव

नमः सद्गुरु ए नमः श्री गुरुदेव नमः अष्टपति सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो काल कलेश तन माहे मिटावो सिमराओ जास विसंभर एक है नाम जपत अगंत अनेक है वेद पुराण सिमरत सुधा खेर कीने राम नाम एक आखे।

अष्टपदी। जह मात पिता सुत मीत ना पहाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जह महा भयान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै। जह मुश्किल होवे अत पहारी, हर को नाम खिनमाहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपहो मन मेरे, नानक पावहो सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनक माया रंग तिख

अगन नहीं बुझै, कोट उपाव दरगाह नहीं सिझै, छूट सनाही ऊब पयाल, मोह व्याप है माया जाल, अवर करतूत सगली जम डानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहज।

काल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कम दृष्टानी जिन तू साज स्वार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार दूध पर जोबन भोजन सुख सूद

सुख मंदर तिसह त्याए सदा मन अंदर जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहु तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जिह प्रसाद पाठ पडंबर हंडावहि।

स्नेही जिह प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन शरणी पर ठाकुर प्रवता कै जिह प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन सास सास सिम

आप अष्टपदी जब अकार एहु काश नाम दृष्टेता पापुन तब कहते होता जब तहरी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कुमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सोग कहो किस है व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी जब एक कह हरागमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तहै तब कवन निडार कवन कत डरै आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत।

जह निर्मल पुरुख पुरुख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश तह शल शिदर लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसह भूख।

माए बाप मित्र सुत पाई, जहें सर्व कला आप है परवीन, तह वेद देव कहां को चीन। जब अपने आप उरत हारे, तो शगन अपशगन कहां बिचारे, जहें आपन ऊच आपन आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जान हूँ आप।

सृष्टम। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जामी पुरख प्रधान।

जिन सतगुर मिली है, सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है, सतगुर की रीस है हो।

निर्मल जन होए सो सेवा काले, जिन अंदर कपट विकार झूठ होए आपे सच्चै वख कड्ढे जज माले, सच्यार सिख बै सतगुर पास काले।

जन नानक धूड़ मंगाए तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरह नाम जपावे पौड़ी। जो तुद सच ध्यान दे से बिरले थोड़े, जो मन चित एक अराध दे तिन की बरकत खाहे असंख करोड़े। तुद नो सब ध्यान दी।

सेवा करहो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी। नानक विचार है संत जन, चार वेद कहंदे

करे हर वस्त संभाले, नाम निधान हर बन जीए, हीरे परवाले, विण काया जे होर थै तन खोज दे, से मूड़ बेताले, से उजड़ परम पवाई है, ज्यों चाड़ मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा। जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो औखा

साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसार सद हृदय बसै, कौन हिरै अभिमान।

ताप संतापी दुर्मत त्याग लाहा किश लेवहो जो उपजाय सो अलाख अपेवहो ऐसा हमरा सखा सहाई गुर हर मिलया भगत दृढ़ाई।

हाउ बहुते औगुण कु कह कोई जांत सिपावै बख्शे सोई गुर प्रसादी दुर्मत खोई जय देखां तहें एको सोई।

पहला गुरका शब्द मने मह मुंद्रा खिंथा खिमा हंडावाऊं जो किस करे भला कर मानो सहज जोग निध पावाऊं।

सम्हारे। एको एक आप एक एक है सगला पासारे। जब जब होए सगल साध जन एक नाम तिहाए बहुत उधारे।

आढ़ आढ़ कौ फिरत ढूंढते, मन सगल तृष्ण बुझ गई। एक बोल पी खब तो नाही, साध संगत सीत लई।

अमृत शक शके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इके आसा महला चौथा हर अमृत भगत।

प्यारा जिन हर सेती मन मानिया सब दुष्ट चख मारा जन नानक नाम ते आया हर रखन हारा हर जोग जोग

गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल थल महियल पूरिया एक निमख जा कै हृदय वसिया मिटे तिसहै विसूरिया अगाध बोध।

पांडवा फंड पहलिया पंड होवै बंधान सो क्यों मंदा आखिया जित जम है राजान पंड हो।

विष्ट छोड़ कर दोजक स्यो मन माना आसा। गगन नगर एक बूंद ना बरखै नाद कहां जो समाना। पार ब्रह्म परमेश्वर माधो पर

माया चित्र बिचित्र विमोहित बिरला बूझै कोई। सब गोविंद है सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत संस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई रहा।

ब्रह्मत फिरत बहु जन्म बिलाने तन मन तन नहीं तीरे लालच देख काम लुभ दराता मन बिसर प्रभ हीरे रहाओ।

साध संग उधार इहो मन आठ पहर आराध काम क्रोध अहंकार बिनसै मिटाय सगल उपाद अटल अशे

योग गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बियोग मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरण काट जमदूत फास रहा शतर दहन हर नाम कहन अवर कश ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआओ गुजरी महला पंजवा तू समरा।

जप मन नाम हर शरणी संसार सागर तार तारण रम नाम कर करणी रहाओ। ए मन मृत शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत् ज्ञान कल्याण निधन हर नाम मन रमन चल चित वित भ्रमा भ्रम जग मोह मगन हितं।

मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तर।

उसात अभिमानी परम भूल नजर ना आवनी मन मुख अंध अज्ञानी उपाय कितै ना लभनी कर पेख थके पेखवानी।

खंडन। आपे सब कट भोग वै स्वामी, आपे ही सब अंजन। आप विवेक आप सब बेता, आपे गुरमुख भंजन।

गुरमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरमुख आप वडाई देवै सोए, गुरमुख

धन धन बड़ भाग हमारा, मन मेरे साचे नाम विटहु बल जाओ, दासन दासा होए रहे ता पाव है सच्चा नाउ रहाओ।